जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, 6 अक्टूबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 3 मिनट वाइटेड हो चुका है। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 0302-62-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

भी भक्त प्राणियों के लिए बस पीस किया जा रहा है और बहुत सी सुनने वालों को ये सुंदर भजन काफी पसंद है। 7:11 व्यतीत हो चुका है, मंगलवार का दिन है, श्री हनुमान बाबा जी का दिन है। तो चले प्रोग्राम में आपकी बार एक सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुंदर सा भजन श्री हनुमान जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आज मंगलवार की खास भजन यात्रा प्रोग्राम में अभी आपने सुना। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और हमारा रेडियो SBS का एप नंबर भी होता है। चले प्रोग्राम में सुंदर सा माता जी का भजन प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी नरेंद्र चंचल।

रेडियो SBS की जरिए नरिंदर चंचल के आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है, हरिओम शरण प्रोग्राम में होगा और हरिओम शरण जी की आवाज में अब की बार ये भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश की गए जय शंकर जी की आवाज में ये सुंदर भजन अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए है। हमारी सभी सुनवालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को अनिल खुद मूर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है शुभ दिन। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। इस वक्त प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर।

महेंद्र कपूर जी की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की सरिये अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये सुंदर सा भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सज देवा के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए है। चलिए प्रोग्राम में सुरेश वटकर जी के आवास में सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस पेश किया जा रहा है और इस सुंदर सा चालीसा के बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर सा आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपकी बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।
1: प्यार किया
0: पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपकी बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म ऐलान का गीत भी इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में दिल में हलचल रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये नानाबस प्रोग्राम में पेश की गई शिल्पा राव की आवाज में अभी आपने सुना सर मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया जी के आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म डॉन दो की ओर एक गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था डोन डू, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई।

कुशल की आवाज में ये गाना पेश की गई है, हमें तुमसे प्यार कितना। श्रेया जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए कुमार सानू जी की ओर, कुमार सानू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई जंगली फिल्म का नाम। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 9:00 प्रोग्राम में 6 मिनट व्यतीत हो चुका है। किशोर कुमार एंड लता

नगर फिल्म का गीत पेश की गई संभय किशोर कुमार एंड लता जी के आवास में। किशोर कुमार एंड लता जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS के जरिए पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है आज की सुबह की प्रोग्राम में। चले अब की बार खासतौर पर किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म कुदरत उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है सॉन्ग बाय किशोर कुमार।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम है कश्मीर की गली मरहूम मोहम्मद रफी कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा

कश्मीर की गली फिल्म का गाना बस पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-2266-6611। इसी डार ही नंबर पर टेलीफोन नंबर पर भी हमेशा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी कर सकते हैं। किशोर कुमार, ये जो मोहब्बत है, कटी पतंग फिल्म का नाम है।

कुमार की आवाज में गाना बस पेश की गई फिल्म कति पतंग, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। मुकेश जी की आवाज में अबकी बार ये गीत पेश किया जा रहा है।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। इशारा फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत माइटी मुकेश की आवाज में पेश की गए। गूंज उठी सहनाई फिल्म का नाम होगा अब की बार। मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, गूंज उठी सहनाई फिल्म का नाम।

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई जीवन में बिया तेरा साथ रहे। रेडियो वेस्ट भी इसके जरिए आज की प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गई है मोहम्मद रफी। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में

ना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम द मूवी द ट्रेन का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। 1970 का फिल्म, 1974 का फिल्म है मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

The Train, फिल्म का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आशा भोसले एंड किशोर कुमार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम द बर्निंग ट्रेन।

दूसरों भी देखिए, गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। फिल्म का नाम था द बर्निंग ट्रेन, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आज की मंगलवार की खास सुबह के प्रोग्राम में पेश की गई, जबकि 8 मिनट बाकी है सुबह 10 बजने में। बहुत सी सुनने वालों है जो रेडियो SBS का ऐप के जरिए बस अपना अपना रिएक्शंस देते हैं और स्टूडियो की ओर भी ऐप किया है। तो चले प्रोग्राम में लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। एक और काफी पुरानी फिल्म का गीत, मधुमती फिल्म का नाम है, लता जी की आवाज में ये गाना, घड़ी घड़ी मोरा।

लता जी की आवाज में ये गाना पिचकी गए घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के मधुमती फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पिचकी गए सभी सुनने वालों की सेवा में। स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। गोरी बुलाए तेरा

एक बड़ी ही खूबसूरत गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए कमल बारूद की आवाज में। मनमोह जी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। 1962 का फिल्म 1962 का खास फिल्म का गीत पेश की गई फिल्म मनमोह जी, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना आज के ये प्रोग्राम में। चले फिल्म मासूम की ओर, लता जी की आवाज में ये गाना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।

लता जी की आवाज में फिल्म मासूम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस में इसकी सरिये अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में फिल्म फिर वही दिल आया हूँ, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म फिर वही दिल आया हूँ, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

फिल्म फिर वही दिल आया हूँ, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई, एक्टिंग सॉन्ग बाय जॉय मुखर्जी, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम, सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम कहा जा रहा है। इस सेवा में बहुत सी सुनने वालों है जो पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम, सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम कहा जा रहा है। और चलिए

चली आना हमारे अंगना, चली आना हमारे अंगना, कभी याद करके गली पार करके चली आना।

पुरानी फिल्म सफर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। बिना पानी मुखर्जी, चितलकर रामचंद्र और गोपाल सिंह नेपाली की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नगमे, पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर प्रोग्राम में, महेंद्र कपूर और लता, धूल का फूल फिल्म का नाम है।

0: को मैं इस हाथ को थामना चाहता हूँ, पप्पा कर रहा।
1: एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी धूल का फूल, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आज की ये प्रोग्राम में। 7 मिनट बाकी है सुबह 10:30 में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म काला पानी, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है आशा जी की आवाज में। नजर लगी राजा तोरे

आशा भोसले की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई काला पानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नजर लागी राजा तोड़े बंगले पर, खास गाना आशा जी की आवाज में जो पेश की गई। लता मंगेशकर और चितलकर प्रोग्राम में होगा 1951 का फिल्म, फिल्म का नाम अलबेला। अलबेला फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है सॉन्ग बाय लता मंगेशकर एंड चितलकर।

लता मंगेशकर और चितलकर के आवाज में गाना पेश की गई पुरानी फिल्म अलबेला का गीत अभी आपने सुना जो रेडियो SBS के जरिए पेश की गई है। रेडियो SBS के जरिए पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आप सभी सही रेडियो पर चुन किया है जहां पर पुरानी से पुरानी नगमे आप हर के लिए पेश किया जा रहा है और जहां पर बातें कम और खूबसूरत गाने आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है। सिंगापुर फिल्म का नाम 1960 का फिल्म मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म सिंगापुर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई द माइटी मुकेश और साथियों की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चले एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी मोहम्मद रफी की आवाज में, बड़ी ही खूबसूरत गीत होगा। हनीमून फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है सॉन्ग बाय मरहूम मोहम्मद रफी।

0: रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना। चलिए अब की बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: मुझे तुमसे

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। 13 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह 10:30।
1: हमें तुमसे
0: पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा
1: शिकायत हो तो ऐसी
0: पुरानी फिल्म चाहत, उसी फिल्म का ये गीत पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस पेश की गई सुहागन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। असरों भी थे गाना सुनकर और काफी पसंद किया है और आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। वैसे कल बुधवार है, कल सुबह 9 बजे से, रोजाना सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम। कोरा कागज था ये मन मेरा, आराधना फिल्म का नाम होगा, किशोर एंड लता। आखिरी गीत, आखिरी पुरानी फिल्म का गीत इस पुरानी फिल्म में संगीतों

सपोर्ट वाल की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 03-265-65-60 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और सभी कामों काज के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कुमार सानू

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए अजरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना उन्हें बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए पेश की गए कैलाश घेर की आवाज में ये खूबसूरत गाना। तो चलिए अब की बार फिल्म लावारिस की ओर। एक फिल्म जो 1900

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में। फिल्म का नाम

खासतौर पर गाना पेश की गई शान और श्रिया घोषाल की आवाज में। शान और श्रिया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS की जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले मिलकर अरिजीत सिंह की आवाज

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू जी की आवाज में।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चलिए फिल्म आवारापन जुजाना की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। अब आप बोली चलते हैं फिल्म का नाम आवारापन।

प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार अमीन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपके बारे गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है इतनी सी बात, इतनी सी बात गाना का बोल।

तेरे मित्र की आवाज में। रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए।

और बेहद पसंद किया है। चलिए अपनी बार तुलसी कुमार NKK की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। तुलसी कुमार NKK प्रोग्राम में।

तुलसी कुमार एन के की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडी फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू की आवाज में गाना और अब की बार फिल्म का नाम होगा इंडियन बाबू।

का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों काज के लिए। टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60-60। सोनू निगम एंड अलका।

पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।

रेडियो SBS की जरिए खास तौर पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर फिल्म का नाम फर्श

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक और गाना मरहूम मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में बस पेश किया जा रहा है, जरूर सुनते ही रहना।

गाना आप सभी ने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के आवाज में सुनकर और काफी पसंद किया है। काफी खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे लता जी की ओर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जाए। काफी खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे लता जी की ओर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। लता के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है बाहरे फिर भी आएंगे।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। अब की बार हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की ओर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज के प्रोग्राम में एक गाना पेश होगा मुकेश किशोर कुमार एन महमूद के आवाज में। चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है हम जोली। द माइटी मुकेश, द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार और महमूद के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: बेटी, ये भारत है।
0: फिल्म का नाम हम जोली।
1: मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा, शनि, चंद्रमा,

जिस घर में ऐसा धाव होता है और प्रेम का नाटक होता है, उस घर को बस राम बचाए, घर का

0: जी ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू टेल मी व्हाट टू डू।
1: आई डोंट नो।
0: यू टेल मी।

0: अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो, मुश्किल बड़ी आ पड़ी, अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो,
0: यू मैं क्या बोलूं जी, यू टेल मी,
1: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी मैं क्या बोलूं जी। ओ बाप,
1: अल्लाह,
0: दादा जी, मेरी बात तो सुनो बेटे, ओ बाप, दादा जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो बेटे, मेरी बात तो सुनो, ओ बाप, दादा जी मेरी बात तो सुनो, दादा जी,
1: इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गाकर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।
2: द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश, किशोर कुमार और महमूद की आवाज में फिल्म हम जोली का गीत।

रेडियो SBS की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई खास तौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में खास गाना भी आपने सुना। चले लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

गाना जो पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में मेरे दिल में हल्की सी, अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था परसमनी, उसी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अब की बार हेमंत कुमार।

गाना अब उस प्रोग्राम में पेश की गई है। महेंद्र कपूर एनाशा, महेंद्र कपूर एनाशा जी की आवाज में ये गाना

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इस गजोंगा दो जगजीत सिंह एंड कुमार द फिल्म प्रेम गीत एन गजोंगा दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कॉम्प्ट प्यार लो प्यार लो।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस गजल में सोनू निगम एंड अल कयाच ने कहीं कम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दाग गजल में प्रतिभा सिंह खैर मंगदे।

तुम क्या जानो दिल करता तुमसे कितना प्यार वास आए द फिल्म आशिक कैन आए द फिल्म हम हो गए आपके इस वोल्गेंट लीजिए इन इट प्रोग्राम गीत उनके लहर विया रेडियो SBS गजोंग दूर कुमार सानू एंड अलका याचनिक कम्त द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम हो गए आपके।

चढ़ा दे रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

कुछ तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,